0: तुमको वाह भी
1: तीम ने रसोम नी इसा तब कलू तिमंदीकेल तब का तिमंदीकेल तब का तिमंदीकेल तिने वाले फिर तो लपन लकान रहन समय ता फाउला ने मिचा वचले चिर का पोका रहन सारे ना मिले उल्ली सना लाव सो ओजोम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरंभ ये फमिशा चाहूता का मिचो याद का पोका वो तिसामी फाउला ने ताल भी फिर तो लपन लकान अब शोए अमान ले तिले स्टार्स पच्ची माना मिले वे चिरामान तो कुन्या पिन पिचेसन तार ने अम्नुलना amin'ny amahana an'le olana ara-dele stage fa ijiroka poka ve mifahaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.